0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει από τα σαπάρ, είτε τόσα έχω χαστηρί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, ο χαστηρί.
0: Ίσμα washing powder, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορίβι. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γκυλέ με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βοδάλ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे आंद्रन ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ता मिला वी जी।

मुझे कहते हैं नईम उल्ला उमर सई द वन सन ऑफ पेरेंट्स तो बिल्कुल नेक पनेगा खुशहाल हो से।

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: Τώρα η μαζί με ζει, δάρτο που γεγέζει από τα σαπάρσι, δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεκανά από σαπάρ και έχω με ίσμα washing powder, έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα washing powder, μάρα η μιζή μου έχω κορτά national or multinational, καπνέιβολ washing powder βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεκανά, τα γιλέ βε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βοήβολ σε ρικρέ τη, ο στόλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की ओ दिनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पर पवा लोसीना न खर पवी
0: शाम जी के दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অদরতে মেলাবিজি।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το βγαίνει για πάντα σαν πάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πας απάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ μάρα με ζει μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε δαστερανγκε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τάρκα να τα γιλέ βε χάρ βαθε μούταχα κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρα να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέ δι ο στόλ κούρβαλα να χωστούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबर उदार तो या कि इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी कि कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गोलशे आंद्रोन ला की गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर तक मिला भी जी।